समा हो चुका है पर प्रबंधक वीरा वालों हुक्म है ऐसे कि थोड़ा जा होर ऊपर ला लेना समा तुम संगत विराजमान होएगी बैठी होएगी। आओ एक शब्द होर पढ़ के उस तो ग्रंथ की समापन करेंगे जी। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। सारे रल के इस पावन शब्द को पढ़िए।

भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को हुआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन कर कै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा

अस गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्तासा है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन

सोई थी सी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबने त्याया जिसनो कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़या।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ भई ले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पाग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया। रहाओ ना हौ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवां,

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ।

अनंत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपने बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आए हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दोष

वाणी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां।

जिसका सबसे आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका हुए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो, तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कह जम के तू तनाए तेरा छड़ जाहे, पहु जल बिखम असगाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल

मत पत दे राखे आप वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी।

पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार ज्ञान दे सागर राजान राज पहन दीवान देव उपमा महा

0: दारू दिता जाए जिदे करके रोग चला जाए। जदो कोई रोग चला जाता बंदा कहिंदा सुकून मिल गया। जदो रोग चले जाणगे तेरे तन के शरीर विच सुख महसूस करेगा। ओ सुख केवल नाम है, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। तन तन होशियार जाने कोई जन कोई विरला जानदा। तन भी खाक हो जाना है ते तन भी खाक हो जाना है।
1: रोग गवाह है अपना ता नानक वैद सदाए।
0: गरीब नवाज कहिंदे असल विच वैद हो है पहला अपना रोग गवावे ता वो वैद सदा सकदा है। जे पहला ही रोगी है ते वो वैद नहीं है जे।
1: पौड़ी
0: गुरु नानक महाराज जी अपार कृपा कर देने।
1: ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया
0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण सिख ना ब्रह्मे दा पुजारी है ना शिव दा पुजारी है ते ना विष्णु दा पुजारी है। गुरु नानक महाराज कहिंदे ब्रह्मा विष्णु महेश देवते इह किन्ने पैदा कीते ने? गुरु नानक सतगुरु महाराज कह रहे ने इह निरंकार दे पैदा कीते होए ने। ते गुरु दा सेवक फिर देवी देवतियां दा पुजारी नहीं है, वह केवल पुजारी है शब्द दा, वह शब्द नू ग्रहण करदा है। तां महाराज कहिंदे जिहड़ा करता है ना वह सिख करते नाल जुड़दा है। तुसी रोज पढ़ते हो करता पुरख, वो पुरख है वह करन वाला है। तो जिहड़ा करन वाला है आपां उहदे कोल जावांगे कि जिहड़े कीते उहदियां बणाईआं होईआं चीजां ने सिख उहदे कोल जावेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस करके महाराज कहिंदे ने इह देवते जिहड़े ने महाराज निरंकार ने ही बनाए हन।
1: ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया,
0: मेरे वाहिगुरु जी ने ब्रह्म देवते नु दे चार वेद दिते ओदी पूजा विच लग गया ते असी शब्द नु छड के ते बाहरली पूजा विच लग गए। तेरा नाम करीचन नाठिया जे मन उरसा होए, करनी पुंगू जे रलै घट अंतर पूजा होए। पूजा की चै नाम त्याई है डण नाम है पूजना होए। मार कहिंदे संसार दे लोक बारली पूजा विच लग गए हन।
1: दस अवतारी राम राजा आया,
0: दस अवतारां विचों महाराज कहिंदे ने विष्णु दा अवतार राम जी आ गए ने। फिर उन्हां नूं भाव उस पासे दैंता वाले तोर देना कीता।
1: दैता मारे ताए हुक्म सबाया,
0: हुक्म मुताबक ता ता के दौड़ दौड़ के दैंता

कोल सुबाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ कीर्तन सुहला सुहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एको अंकार सत गुर प्रसाद जयकर कीर्त आखिए करते कहोहे विचारो तित कर गावो सुहिला सिवरो सजनहारो तुम गावो मेरे निरपौ का सुहिला हो वारी जित सुहले सदा सुख होए रहाओ नितन जेड़ समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कमण सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल देहो सजन असी सुनिया जो हुआ साहिब शिव मेल कर कर एहो पहुंचा सदरे नित पवन सदनहारा समरिय नानक से दे अवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर को वेस अनेक बाबा जयकर करते कीरत होए सो कर राख वढाई तोय रहो विश्वे जसियां कणियां पैरा तिथि वारी माहो हुआ सूरज कोर तनेक नानक करते के तेवेस राग तनासी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने कारका मंडल जरक मोती धूप मने आंडो पवन चबरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए भाव खन्ना तेरी आरती अनहता शब्दवा जंत भेरी रहो सहस तब नैन नन नैन है तोय को सहस मूरत ननायक तोई सहस पद बेमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिसते चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत जिस पावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो आन दिनो मोए आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को हो जाते तेरे नए वासा रागवड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो मरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा है कर साधु अजली पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साध न जान्या तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चला जुबै दुख पावै जमका सह सिर डंडा है अर्जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पो खंडा है अब ना सी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोप खन ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे सुख मंडा है रागौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खा चलो हर लाहा आ गए बसन सुहेला औद गटे जिनस रह नारे मन गुरमिल का सुवारे रहाओ यो संसार विकार संसे मैं तरेओ ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह इवर सकत कथा दिन जानी जाको आए सोई बिहा जो गुरते मने बसेरा निज कर मैल पाओ सुख सहजे बौर न होए गो फेरा

नाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद राग सूही महला पहला चौपदे घर पहला भांडा धोए बैस धूप देवहो तौ दूधै कौ जावहो दूध कर्म पुन सुरत समायण होए निराश जमावहो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो गुरु रूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो जो अमृत वेले गुरु चरणां दी हाजरी भर के गुरुदेव जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सतगुरां ने कृपा कीती है अमृत वेले पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके अज दे इलाही दरगाही मुख वाक बख्शिश कीते हन जो सूही राग विच्चों तन तन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दतार जी दे पावन मुखारबिन तो उचारण पावन शब्द सतगुरां दे पावन पवित्र अंग 728 उपर सुभायमान है। अज हुक्म रूप विच सतगुर जी ने बख्शिश कीता है दतार गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह बख्शिश मेहरामत कीती है कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम जो तत् रूप है जो सच दा आनंद है वह परमेश्वर दा नाम ही शुभ कर्म है। वह नाम जो हिरदे रूपी बर्तन अंदर भांडे अंदर विराजदा है वाहिगुरु की जुगत दे नाल गुरु जुगत दे नाल उसनों मथिया जांदा है। जदों निर्मल बर्तन निर्मल मन दे नाल शुभ कर्मा रूपी दुध दे राही उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं आराध्या जांदा है। शुभ कर्मा दा दुध सुरत दे विच उस परमात्मा परमेश्वर दा मथन कीता जांदा है। वाहिगुरु की कृपा दे नाल वह नाम रूपी तत् प्राप्त हुंदा है। इस सतगुरां ने गुरुदेव पिता महाराज ने परमेश्वर की प्राप्ति की जुगत इस पावन पवित्र शब्द विच दर्शाई है। गुरु कृपा करे सबना नू दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजन जी समूह संगत का धन्यवाद। आओ प्यार सहित अमृत बाणी श्री सुखमनी साहब जी के पाठ नाल आपां हुण जुड़ना है। फुल्लां चुक्कां दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हरै। प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै। प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै। प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ कै सिमरन साध कै संग। सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जिन आप सिमराय, नानक ताकै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मलिता। प्रभ को सिमरह तिन अनद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंगिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न छूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह सुमानी। प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लाग वेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन क्यों सगल आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ नाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता, सुतमीत न पाई।

रह चलै, जह मुश्किल हुवै अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पापर हरै, गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जी मार गयो जात इकेला, तै हर नाम संगहूत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै, छूटत नहीं कोट लक बाही, नाम जपत तह पार पराही, अनिक बिघन जय आए सुंगारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौ मैला मल कबू न तूवै, हर का नाम कूट पाप कूवै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग, जिह मार के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तूसा, जिह पैडै मान दुगुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जह पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तहनाल पछानू, जह महा प्यान तपत बहुकाम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जात्र का मन तुझ आकर खै, तै नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रति रंग कै, नानक जन कै बिरत बिकै, पार हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन का त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग, हर का नाम जिन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै ऊट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, पोत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत ऋद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाइय, संत की सेवा नाम त्याइय, नाम तुल कछवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजिस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब त्यान, खट शास्त्र सिमृत विख्यान, जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया, अनेक प्रकार किए बहु जितना, पुन दान हमे बहु रतना, शरीर कटाए हमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपिसर थीवै, अगन मारे हुमत प्राण, कनिकसव है वर भूमदान, न्योली कर्म करै बहुआसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावै, ताव पी हौमै मैल न जावै,
हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही, मन कामना तीर्थ दे छुट्टै, गर्व गुमान न मन ते हुट्टै, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही का बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो वै बहु देहि अनीत, शुद्ध कहा हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतद बहमूच, बहुत सियाणप जम का भव व्यापै, अनिक जतन कर त्रिशन ना त्रापै, भेख अनेक अग्नि बुझै, कूट उपाव दरगह नहीं सिजै, झूठ सनाही उपयाल, मुहि व्यापै माया जाल, अवर करतु सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिन्ने मानै, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए, चार पदार्थ जिको मांगै, साजना की सेवा लागै,

मैं चूरै। जी को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख

जा का मन हुई सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पिख है सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्धन को धन तेरो।

ਸਕਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀ ਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਮੀਠਾ ਸਰਵ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਵ ਥੋਗ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਗੰਤ ਸਭ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤਣ ਦੁਲਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਕਿਛ ਬਹੁਰ ਸਾਉ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤਾ ਭੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤਿਸ ਆਗੈ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਹੈ ਮਤ ਹੈ ਉਸਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਿਕ ਭਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਕਿ ਜਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨ ਸਹਿ ਮਨ ਪੁਛਤਾਵੈ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਿਓ ਤੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹੇ ਤਾਕੂ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ਕੇ ਮਾਨੁ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਲੇ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜੋਵਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸੁਭਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਧਰੂ ਮੂਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਪਸੁ ਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ ਅਸਤਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਅਸ਼ਟ ਪਰ ਦਰਵ ਕੋ ਹਿਰ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਤਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਿਥਿਆ ਵਾਸਲੀਤ ਵਿਕਾਰ ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਮਿਥਿਆ ਸਫੈ ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਬਿਰਥੀ ਸਾਗਤ ਕੀ ਯਾਰ ਜਾ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ ਮੁਕਾਵਤਾ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਕਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਡਲਾਵਤ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਦ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮ ਮੈਂ ਮਰੈ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਤ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਕੁੰਡਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੈ ਮਾਨੈ ਆਪੈ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤਨ ਬੇਰਾ ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ਉਪਾਵ ਸਿਆਨ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਗ ਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸੁਧਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੈ ਧਿਆ ਕਤਵਰ ਲੁਭਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਰੂ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੂ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਉ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰੌਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा रूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पतरै गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता शिवराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गाओ आए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी माया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हरनाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथाष्टपदी साधक संग मुखु जल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटै बिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा वरने कौन प्राणी नानक साधक शोभा परमाय समानी साधक संग गुचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्लै साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग नकतु तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सु प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग न बीगा पैर साधक संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होताप साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साधक संग न कब हूं तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गुचर लै साधु के संग अजर सह साधक संग वसै थान उचै साधु के संग महल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग श्रभ थान गामु नानक साध के संग सफल जनामु साध के संग नहीं कचकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रित बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै प्रमीठा साधु कै संग कट कट डिठा
साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुन है तेता बखियाने, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूछ ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै किस बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्यमान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसुदा को खुद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ, नानक ज्यों पाव कै सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा, मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पय, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृश्य अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी सुमाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी ने कह ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी आहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहि, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उर तारै जो अंतर नाम, सर्व में पेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको पर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसो, मन में प्रीत निरंजन दर्शो, पर त्रै रूप न पेखै नेत्र, साध के टैल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्ये को ऐसा परस, वैसन सोजी सुपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुवै ने कर्म, तिस वैसनु का निर्मल धर्म, काहू फल कीचा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानको वैसुन परम गत पावै, भगौती भगवंत भगत का रंग,
सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन स सगला भरम कर पूजय सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मलख हुवे तिस भगवती की मत उत्तम हुवे। भगवंत की टहल करे नित नीत मन तनेर पे बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे। नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नामा तो मैं सुदे राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उदय जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे। वेद प्राण सिमृत बूझे मूल सुखम मैं जाने स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो वर्णा पै जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए साधु संग पावै जन कोई कर कृपा अंतरूर तार पास प्रेत मुग्ध पात्र को तार स्वर्व रोग का उकद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काउ जुगत की तय न पाइय धर्म नानक किस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास हो तिसका नाम सतराम दास हो आत्म राम तिसन त्री आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गै परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संगत मुदाओ सहसी जुगत नानक राम दास हो प्रभ की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुख सो कहावे तैसा हरक तैसा सोग सदा अनंत नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी विखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख है तैसा तिन्नाओ आपे करण करावन जोग प्रभाव है सोई पुन होग पसरे आप अंत तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहु विधनिक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवत नाम त्याव है नानक करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपे गातम निकोर कई कोट पर दर्व को ही रह कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रमाहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशिर सूर्य नखियतर कई कोट देवदान इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपने सूत तार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्शास्त्र कई कोट कीर्तन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग की नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच सब ते नीरे सबूते दूर नानका बलिपतरिया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मै जीवह मरै कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट कालै तक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ त्यास तिनको मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सु प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक कंकार कई कोट कीने बपात
प्रभ ते हुए ब्रह्मा समाता कंत न जाने कोई अपे अब नानक पुरब सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तम प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा निहारे कु नेत्रे कई गुण नाम रस पीवे अमृत भय सत सद ही जीवे कई गुण नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार नै जल तल मही अल सोयस्तपदी करण करावन करण जोग जो तिस भावै सोई होग किन में थाप तापन हारा अंत ने किच पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे निकरंग प्रकार कर कर दिखे अपनी वडियाई नानक सब मै रहा समाई प्रभावै मानुकत पावै प्रभावै तं पात्र त्रावै प्रभावै बिन सास तिराखै प्रभावै तं हर गुण पाकै प्रभावै तं पथ सुधारै आप करै अपन विचारै दुहा श्रिया काप स्वामी के लैविक से अंतर जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर नयावै कहो मानुक ते क्या हुए आवै जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किचले जो तिस पावे सोई करे अन जानत विख्या मै रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दै दिस्तावै निमक माय चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत ला दे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन ना मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवा जा का दिस कछु न आवे तिस तत्काल दा दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीस ताका लिखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीवै दिख बढ़ाई इसका बलना ही सहात करन करावन सर्व कुनाथ अज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुंथियो कबहूच नीच में बसै कबू सोग हर खरंग हसै कबू निंद छिंद व्यवहार कबू उबकाश पयार कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबू नृत्य करै बपात कबू सोए रह दिन रात कबू माँ क्रोध विकराल कबू सर्व की हो त्रवाल कबू होए वह बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू फकीरत में आवे कबू भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे विख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनिक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबू साध संगत पावै सुस्तान ते बौर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास सुस्तान का नहीं विनाश मन तन आवृत्ति करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जले आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सदगुरबान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारी या नानक गर्भ गले अष्टपति जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जिन मरै बोजुन परमावै धन धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक कीहा मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै तिन समान का संग न जावै बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जानै बलवंत किन मैं होए जाय पसमंत किसै न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगै परवान कोट कर्म करै हो तारी श्रम पावे सगले बिरतारी अनिक तपस्या करे अहंकार नर सुर फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दर गय को कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछोए तब इसको सुख ना ही कोए जब ये जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे कुबैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए
सब कृपा ते बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक छूटै, सहस कटे लख उठ तावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै, अनेक भोग विख्या के करे, नेत्र तावे खप कमरे, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ वृथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बिडभागी किसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप, करन करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आपा प्रभ सोए, जो किछ कीन सु अपने रंग, सब ते दूर सबू कै संग, बूझै देखै करै विवेक, आपहि कपै अनेक, मरण बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहा सुमाए, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनु अपन विस्तार, सब कछु उसकौ करने हार, उसते फिन कहो किछु होए, थान थनंतर कै सोए, अपने चलताप करने हार, कौत कर रंग आपार, मन मै मन अपने माहि, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी, गुरु प्रसाद किन बखियानी, सच सच सत सब किन्ना, कोट मदे किन बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, व सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, सलोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार, अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे कुर कह न कोई, संत कै दुखन थान प्रस्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग

संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा वियोग, संत की निंदा दुख में दुख, नान संत पावे तो उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसा का नहीं मित्र, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म है मर, संत की दुख न सुख ते टर, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नान संत पावे ता लय मिलाय, संत का दुखी अद बीज ते टूट, संत का दुखी कितने काज न पहुंचे, संत काय दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी जड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोता, ज्यो सास बिना मृतक की लोका, ज्यो सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी को जड़ के, संत के दुखी की जड़ किच नाही, अपन बीजा पे ही काहे, संत के दुखी को वर्ण रखन हार, नान संत पावे तां लय उबार, संत का दुखियों बिललाई, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाई, संत का दुखी भूखा नहीं राज्य, ज्यो पावक इंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यो बुआड़ तिलके तुमाही दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो दिस भाव है सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तृष्टे कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पै कृत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तुत करो दिन रात, सत्या सास गिरा, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोठिया, अपना खिलाप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे ते सब नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक, तज हो सियान सुरजन हो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए, इष्टपदी मानु की टेक वृथि सब जान, देवन कोई कह भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बहुन तृष्णा लग गया, मारे रखे को आप, मानु कह किछ नाही हाथ, तिसका हुकुम बूसु होए, तिसका नाम रकंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिघन लागे कोई, मन में कर निरंकार, कर मन मेरी सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सासंग बिनसै सब संग, चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक जल मत्था, बड़भागी ते जन जग माही, सदा सुधार के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, उसे तनवंत गणी संसार, मन तनमुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत की ओ सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सात संग हर हर जस रहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आंदिर कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जी जन की आशा, किसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रमंच त्यावे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवको किस ते डरे, जैसा सत ऐसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब उजिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न किच जन्मै न किच मरै, अपन चल ताप ही करै, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, वाग्याकारी धारी सब दृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनेक जुग त्रिताप उताप, अविनाशी नाही किच खंड, धारण धार हो ब्रह्मांड, अलख भेव पुरख प्रताप, अब जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे में लय कृपाल, गुर का सब जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बिट भागै।

ਕਰਮ ਜੁਗਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸੁਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ। ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋਇ, ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ। ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਜੇ ਤਿਸ ਮਾਇ ਸਮਾਇਓ, ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਨਿਆਏ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦਿਨ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਤਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕੁਦਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਟੂਟੀ ਗਾਢਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀ ਆਇਆ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ। ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰਨਾਮ। ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ, ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀ ਆਦਰ ਬੈ। ਅਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਰੋਗ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਤੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਆਵ ਚੜਤ ਰਹਿ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ਼ਟਰੈ। ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਭੁਗ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਜੋ ਮਾਵ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ, ਨਾਨਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ। ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ। ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ, ਲਪਟਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸਿਧੀ ਘਰ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਲਾਤ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਕਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਸੋਏ। ਵਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਤੋਏ ਪੀਓ, ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ, ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ। ਅਨਿਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਚਾ ਕੈ ਉੱਠ ਗਈ, ਸੰਤੈ ਦਰੇ ਆਇਆ। ਸਰਗ ਸੁਗ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ। ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਦਾਰ, ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾਉ ਕਰਨੈ ਹਾ, ਸਭ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਚੀਤ। ਭਗਤ ਭਗ ਸੁਣੀਐ ਤਿਹ ਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ, ਕਿਛੁ ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ। ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ। ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ। ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ। ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਉ। ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨਿਤ੍ਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ। ਅਣਦਰੂ ਮੰਗਲ ਸਜਾ ਕੈ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸ਼ਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਥਮਾ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਵਗਾਹੇ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪੁਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ, ਜਿੰਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ। ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ,
जन मरै फिर आवै जाय ऊच नीच के स्थान जैसा जन आवै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करै करंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे किन माहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संगुदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब फली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा के हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बूझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे वे दाते दुख कट नहार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सोवट भागी जन कै संगे किलिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुता बुझनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रभे आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपौ हुए बसाना जिस ते उपजिया तिस माय समाना बस माहेली बस्त गडाई ताको पिन्ना कहना जाई बूझै बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का शिव का ज्ञाकारी ठाकुर का शिव सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जानै संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक सास सास सुमार है अपने जन का पर्दा ठाके ठाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक किया पत राखे ताकि गत मित कोई न लखे प्रभ के सेवक को न पहुंचे प्रभ के सेवक उच्चे उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दादिस प्रगटाया निक्की कीरी में कल रख है भस्म कर लश्कर कोट लख है जिसका सास न काटता पोता को रख दिख रहात मानस जतन करत बहुपात तिसके करत बिरते जात मारन रख अवरण कुए सर्व जिया का रख सोए काही सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रबलक विडानी बार बार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके चवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कर सांग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नाम मैं नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जाजे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नी दात करे भगत आत्म कह चाये प्रभ अपने सो रह सुमाए जो हुआ हो उत्सु जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह कना जानू आठ पैर प्रभ सह हजूरे कौन नानक सही जन पूरे
मन मेरे तिन की ओट ले ही, मन तने अपना तिन जन दे ही, जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व दुख का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्श पाप मिटावै, वरसियान सगली चाट, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक, सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ स्पदी, सतगुरु सिक्खी करै प्रतपाल, सेव को गुरु सदा दयाल, सिक्खी गुरु दुरमत मल हिरै, गुरु बचनी हर नाम चिरै, सतगुरु सिक्के बंधन काटै, गुरु का सिख विकार ते हटै, सतगुरु सिक्को नाम धन दे, गुरु का सिख वडभागी हे, सतगुर सिक्का हल्त बल सुवार, नानक सतगुर सिक्को जी नाल सुमार, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आप उसको कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बिचै सतगुर कै पात, सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा साप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले, बीस विश्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुरु को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, अठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानु जिन मैं पार ब्रह्म, इकै आप नहीं किछ भरम, सह सियान लया न जाइये, नानक ऐसा गुरबट भागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, पेट संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गै गवे, सुन कर बचन करन आघानी, मन संतोखा तुम पतियानी, पूरा गुरख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्टि पेखै हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिसलै मिलाए, जे बाए कुष्ट तनेक, सतपुरख पूर्ण भवे, कहु बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वय सुखदाई, ताकि कीमत किन्ने न पाई, इनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने, इव रस पावै जन कुए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुर का नाही कदे बिना, जा कै मन प्रगटे गुणदास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया कै संग न ले, मन में राखै हर हर एक, अंधकार दीपक परगासी, नानक परम दुख तहते नासे, तब तुम्हारे ठाठ वरताय, अनुत भय दुख नाठे पाही, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे, भव चुका निरपो हुए बसे, सगल ब्याज मंती कह नसे, जिसका सातिन कृपा तारी, सा संग जपना मरारी, थित पाई चुके प्रम गवन, सुन नानक हर जसरवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चित प्रभा बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर को सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगा साध कै संग, रच रचना अपनी कलतारी, अनक बार नानक बलिहारी श्लोक, साथ न चालै बिन भजन, बिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक क्यों धन सारस्पदी, संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, और उपास समीत विसारो, चरण कमल हृदय में उतारो, कर्ण कान सो प्रभु सुमरत, दृढ़ कर गहो नाम हरवत, यो तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आसरा को मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाहि, जिस तन को चार कुण टुटता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित पाचै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करै भली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी, अनक पावी रोग न जाए, रोग मिटै हरव कद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगै परवान, मन प्रभु दो हर कै नाई, दा दिस्ताव तावै ठाए, ताको विघ्न लागे कोए, जा कर हृदय बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन सह पूर्ण हुए आस, भगत पाया तुम परगास, चित कर जाए बसे बिनासी, कौ नानक काटी जमपासी, तत विचार कह जन साचा, जन मरै सुखा चूका चावा, गवन मिटै प्रभु सेव, आन त्याग स्वर्ण गुरुदेव,
यो रतन जन का हो उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, और पाप सब मीत अवर अपाव न छूटन हारे। सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानु फल पाए। सांगना चालस तीर तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सुत मीत कुटाम्बर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अस्वस्थ रथ सुवारी, चूटा डम चूट पासारी। जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पुछदाना, गुर की मत ले याने, भगत बिना वो डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माही, जन जन के किल बिख जाहि। आप जपो अवरा नाम जपाओ, सुनत कैत रहत गत पावो, सार पूछत हर को नाओ, सह सुभाय नानु गुण गाओ, गुण गाव त्रिस मैल। बिन सजाए हो मैं बिख फैल, हुए चिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास सर नाम संभाल, चाट स्यान सगली मना, साध संग पावै सच तना, हर पूंजी सच करो विहार, यहाँ सुख दर गय जयकार, सर्व निरंतर एको देखो, नानक जाके मस्त लेख एको जप एको साला, एक सिमर एको मन आहे, एक उसके गुण गाओ अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरे हो प्रभ्याप, अनेक विस्तार एक ते भय, एक अराध प्राचित गए, मंथन अंतर एक प्रभ्राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाई, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाइष्ट पदी, जाचक जन जाचे प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गावों, सास सास प्रभु तुम्हें त्यावों, चरण कमल सो लागे प्रीत, भगत करूं प्रभु की नित नीत, एक ओटे को आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार, प्रभु की दृष्टि मां सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या सेजन त्रिपताने, पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजय चाहो साध कै सांग, परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रगासन दिन लिवलाग, बड़भागी जपिया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुरु ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु होयो दयाल, सेवक की नु सदा निहाल, बंदर काड मुख जन भया, जन बंधु प्रम गया, चुनी श्रद्धा सपूरी, रव रया सत्संग हजूरी, जिसका साथिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जी काल न पाने, सो क्यों बिसरै जी किया जाने, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जी जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जी अगन मेरा कै, गुर प्रसाद को बिरला लाकै, सो क्यों बिसरै जी बिकति काढ़ है, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है, गुर पूरै तति है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, सा जिन संत करो हे काम, त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर प्रभ सो, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो, भगत पाए तरी है संसार, बिन भगति तन हो सिचारु, सर्व कल्याण सुख निध नाम, मूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुखा होत नास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मंथन अंतरी सुहाओ, नेत्रों पेक दर सुख हुए, मन विकसै सा चरण धोए, भगत जना कै मंत्र रंग, बिरला को पावे संग, एक बस दीजै कर माया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभु बख्शन दीन दयाल, भगत वत्सल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतपाल, आदि गुरु कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो हुए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, न हम निर्गुणया नीचे जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निम करके गुण गाए, अनक राज भोग बढ़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई, भो भोजन का पुर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, लोक सारगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जापो अष्टपदी, जब अकार कछ न दृष्टिता, पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाध, तब बैर विरोध के संकमात,
जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क सो कह किसे व्यापत जब अपना पापार ब्रह्म तब वो काक सोवत परम आपन खेलावर तीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक हरग मपारु तब नरक सुर को कौन उतारू जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत रहे तब कवन निडार कवन कत डरे अपन चल तब करने हार नानक ठाकुर गम अपार अविनाशी सुखा पनासन तय जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किसोए जब अविगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आप आपी चर जाओ नानक अपन रूप आपी उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को कीश जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावे तह किसे भूकवन तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी सुबापन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपै परवीन तय वेद कतेव कहा कोचीन जब अपने आप आपुर धार है तो सगन सगन कहाँ विचार है जय अपन उचापन आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा बिस्मन बिस्म भय बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अचेत पे सुमाया उहां किसे व्याप्त माया पुष्पुआ पै आदेश क्यों गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपन आप पतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते ऊचा नानका पुष्पुआ पै पहुंचा जी आप रचियो प्रपंच कार त्यो गुण में किन्नु विस्तार पापुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंचावताल जल माया जंजाल हो मैं वो परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन के लाभ कर देख है किल संकुच है तो नानक कह जय अभिगत भगत है आप जय पसरे पासार संत प्रताप दूपा काया पे तनी उनकी शोभा अनुह बनी आपह कौत करे आनंद चूज आपह रस भोग निरजोग जिस भाव है तिस अपन ना इलावे जिस भाव है तिस खेल खिलावे बेसुमार अथाह गंते अतुल ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बुले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात इस पावे तां श्रेष्ठ उपाय आपने भाणे लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किछ होए अपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोय न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तजवर कहा को जाए सब सिरेक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार

जामी रहो व्याप प्रतिपालय जीन बोपात जो जुर च्यो सुति सहते आत जिस भावे तिसलै मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक जानिया जन लागा हर एक कै नाए तिसकी आसन वृत्ति जाए सेवक को सेवा बनियाई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाकै मन वसिया निरंकार बंधन तोर पय निर्वैर अंदिन पूजय गुर के पैर ये लोक सुखी परलोक सुहेले नानक हर प्रव्यापै मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचनर के गुण गाओ प्राण तरन कह है सुहा वाट पैर पर पिखो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हलत पलत दुएले सुहा राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिसाच परिखिया मंत नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करहु व्यापारी दर गैनी बह के तुम्हारी काटे कर को मन वाहे नानक बहुर नया वह जाहे किस्ते दूर कहा को जाए उबरे राखन हार त्याए निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचनहार श्री उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताकि कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदृत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहूत निहाल ताकै निकट नयावत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पिटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संगंतर प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माहे अनिक रंग नाना दृष्टाहे नौ निदमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समादन हतैनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसाब दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट ब्याप रहा भगवंत तरन बाहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पावन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दै दिशे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख सस्यर सूर नखियत्र महेक पाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खिल खेल बोल न पाइय गुण है अमूल सर्व जो

मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करहै बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़ियां चढ़िया होए इकीस सुन गलां आकाश की कीटां आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरति ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न

नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाशरे नमस्तं निराशरे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजिबे नमस्तस्त अजिबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेसे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वकूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शांत त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात शंद नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पहान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ती विभूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमे अपोगी अपुगते नमो जोग जुग वे सुवरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इशनान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तं निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करता अधो उर्द अर्धं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदिया पेदिया नामं अकामं समस्तु पराजी समस्त अस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वगयानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद
अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल कर्म अलख कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद आदरूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहू नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जानहि जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुर तीन लोक चौदह के बिखय जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकत दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र ना जानहि जेहे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाकत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना आवहि वह चित मधुभार छंद तुआ प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनाश आजान बाहु शाहान शाह राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाट्य अंड अंड बाटे चाचरी छंद तुआ प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वरती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथिसय आदिसय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्व प्रसाद काथते के अछेज देसै के अभिज भिसै के अगंज करमै के अभंज परमै के अभिज लोकै के आदित सोकै के अवतूत वर्णै के विभूत करणै के राजं प्रभाह के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपाव अनुपय के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाख व्यैब है के गैबुल गैब है के अपवल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है
के सर्वं कली हैं, के सर्वं दली हैं, के सर्वत्र मान्य हैं, के सर्वत्र दान्य हैं, के सर्वत्र गौण हैं, के सर्वत्र पावन हैं, के सर्वत्र देशा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र राज्य है, के सर्वत्र साज्य है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहु, के सर्वत्र पाहु, के सर्वत्र देशा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज्य है, के सर्वत्र सोख है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देशा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जापी है, के सर्वत्र थापी है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कली में, के परमं फही में, के आकल अला में, के साहिब कला में, के हुसनल वजू है, तमामल रजू है, हमेशुल सलाम है, सलीखत मुदा में, गनीमल सिकस्त है, ग्रीबल परसुत है, बिलंदल मकान है, जमीनल जमान है, तमीजुल तमाम है, रजूवल मैदान है, हरीफल अजीम है, रजाइक यकीन है, अनेकों तरंग है, अपेद है, अपंग है, अजीजुल निवाज है, गनीमुल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुगत प्रभा है, सुजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तुल पराज है, सदा सर्व साज है, समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओम आद रूपे, अनाद स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिभर्गं त्रिबादे, अगंजे अगादे, सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे, त्रिभुगत स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, के नरकं प्रणाश है, पृथ्वीउल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, बेभुगत स्वरूप है, परजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, बेभुगत प्रभा है, अनुकत स्वरूप है, परजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंत है, अबंध है, अभगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेक है, अटा है, आगाह है, असंभ है, अगम्ब है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत त्वा प्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणं, सर्वंत्राणं, सर्वंकर्मं, सर्वंतर्मं, सर्वंज्युक्ता, सर्वंमुक्ता, रसावल शांत त्वा प्रसाद, नमो नरकनाशे, सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं विभूते, परमात्मं प्रमाते, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पुत्र है, न पुत्र है, न सत्र है, न मित्र है, न तात है, न माता है, न जाता है, न पाता है, निरसाकं सरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती शांत त्वा प्रसाद, के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशो सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चिराग है, के कामल करीम है, के राजक रहीम है, के रोजी दहंद है, के राजक रहंद है, क्रीमुल कुमाल है, के हुसनल जमाल है, गनीमुल खिराज है, ग्रीबुल निवाज है, हरीफुल शिकन है, हरासुल फिकन है, कलंकन प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाइक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं प्रणास है, बहस्तुल निवास है, के सर्बुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परम ईश है, समस्तुल अदीश है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनल जमा है, अमीकुल इमा है, क्रीमुल कमाल है, के जुरत जमाल है, के अचलम प्रकाश है, के अमितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलम अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुभार शांत व प्रसाद, गुणमन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंज, हरनर प्रपंज, अनगन प्रणाम, गुणमन सलाम, हरनर अखंड, बरनर अमंड, अनपव अनास, मुनमन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अनशेज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, कृत तर तुरास, अजान बाहो, एक है सदाहो, ओंकार आद, कथनी अनाद, खालखंड ख्याल, गुरबर अकाल,
कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टोट भंडार अन ठठ अपार अडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है कृत के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्व भर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करुणाकर है अजपा जप है अतपा थप है अकृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्भर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भावभंजन है आरिगंजन है रे प्रतापन है जाप जापन है आकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सात रूपे नमो परम तत्ंग अततंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलहकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अनकामे भुजंग प्रयास त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटहा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामं बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमूल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमूल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं त्वा प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे ओंकार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूते एक रति बिन एक रति के मते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बिद नियावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसिख है
वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेखाय पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार कति खै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तुर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे यार अब चार है सार की धार पशैया तुर प्रदेश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान को तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप थपेंगे उन प्रतापन बाट जैत धुन पापन के बहु पूंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवाय अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इशनान गजादिक दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग के नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो ना हत फिरियो लिए सात समुंद्रन लोक गयो परलोक गवायो बास पियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशा को शीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पश को मिरतान कौ पूजन तायो उर के रिया उर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान कौ पूजत है पश को मिरतान कौ पूजन तायो कूर किरिया उर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम का वहो आप हाथ दय होए बचा वहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिया सब बैरन को आज संग्रिया पूर्ण होए हमारी आशा दूर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई आवर ना त्याऊं जो भर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दय मुझे उभरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हू जो सदा हमारे पच्छा श्री आश तो जिजू करे हो रक्षा राख ले हो मोहे रख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर भीषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत
ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰਿਆ ਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਅਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਾਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਜੇ ਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾਕੋ ਕਰਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਾਸ਼ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇ ਤਜਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੈ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਕਹਤਾ, ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵੈ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤੇ ਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਇ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੀ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਹਿਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਰੇ ਹੋ, ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ, ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਬਰਾਤਾ, ਕਿਲ ਬੇਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਅਨਕੋ ਸ਼ਾਇ ਕਰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜਬ ਪਹੇ ਦਯਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ, ਸੁਨੇ ਗੂੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਜਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਚੌਪਈ। ਸੰਬਤ ਸਤਰੈ ਸਹਿਸ ਪਣੀ ਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹੇ ਜੈ, ਭਾਦਰ ਵਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰ ਸੁਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਸੋਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ, ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਨਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ, ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਾ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ,
ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹਾਓ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ, ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸੋ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾਓ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜਹੋਂ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸੁਵਾਰੀਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜਹੋਂ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਲਵੇਖ ਕਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਤੁਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵੇਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ, ਦਹਿ ਦੇਸੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਆਵ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਰਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ, ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੁਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਹੋ ਕਥੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪੱਛੋ ਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਿਨੇ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਆਏ। ਆਖੈ ਤਾਂ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗ ਤੂੰ ਉਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਆਗਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰ ਸੁਣ ਆਇਆ। ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਆਹੋ ਦਿਖੀ ਵਾਲਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤਿਵੈ ਚੱਲੈ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈ ਚੱਲੈ। ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਵੈ ਚੱਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ।
ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਤੋ ਬਹੁ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਵਜਾਏ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਮੈਲੇ ਤਿਨੇ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ ਮਰਨ ਮਨਹੋਂ ਵੇ ਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣ ਹੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੇ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਬਬੇਕੀਆਂ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਆਵ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸੁਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਆਸਮਾਓ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸੇਵ ਸਾਖਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਿਹੀ ਗੁਣੇ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁਤਾ ਸੁਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਨਹੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਉ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ
कहे नानक ईवड़ दाता सो क्यों मन हो विसारी है। जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जे ही करता है खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी त्रिशना माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाउ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लेव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै बिटहो रहे लोक वेल लाए। ऐसा सतगुर जी मिलै तिसनों सिर सौंपिया विचों आप जाए, जिस दा जीव तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जियो हो लाह खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजारा, ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत किता जिचर हर रस पल्लै न पाए, हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ न कृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाई है सतगुरु मिलै जिस आए, कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरे आ हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जो तराखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृहो मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापए, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई। कहे नानक ए नेत्र आंद से सतगुर मिलया देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो सचै सुनने नु पठाए, सचै सुनने नु पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी, सच आलख वेडाणी ताकि गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सचै सुनने नु पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे परगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया। कहे अनेक रूप नाउ नवनिद तिसदा अंत न जाई पाया, कहे नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रख कै वजा पवन वजाया। एहो साचा सुहेला साचै घर गावहो, गावहु ता सुहेला घर साचै जिथै सदा सच ते आवहे। सचो ते आवै जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे। कहे नानक सच सुहेला सचै घर गावहे।
आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुर ते जानी।

मन रहसीए तां पाए मोख द्वार सच तां पर जानिए जा जुगत जाने जीव तरत कां साधक विच दे करता बीओ सगदां पर जानिए।

जो कर्म नस सिंह शरण कत जइयो जो जम्बुक गोरस एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे प्राण गए सागर मल फुन काम नयाव प्राण जो था कि थिर नहीं कैसे बिरमावो बूढ़ मुवे नौका मल कहो काहे चढ़ावो मैं नहीं कछ हौ नहीं किश आहे न मोरा अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा अमै दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल्लो काम क्रोध अर लोभ मोह

अवर निराफल कमाओ। इहो मन ईटी हाथ कराओ, फोन नेत्रो नींद न आवै, रसन नाम जपो तब मथिया, इन बिद अमृत पावहु मन संपट जित।

राखण कौ तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिस न हुए दयाला। सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्व कला भर पूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिने अपना प्रव जाता। हर नाम अराध है नाम वखाण है, हर नामे ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा। वडभागी से काढ़ी यह प्यारे, संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधी है, निर्मल मने हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटी है प्यारे, चूके जम की काणे। तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने भाणे। ऊच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उदरहे सुनते उदरहे, बिन सह पाप कनेरे।

प्रभु अपने कियो, हर चंदौरी चित भ्रम सकिए। मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग न चालती सकिए। अंत तज जावत माया, रस भोगन अत रूप रस माते। इन संग सुख न पाया, धन धन हर साध जन सकिए। नानक जिनी नाम ते आया, जाए बसो वड भागणी सखिए। संता संग समाइए, तह दुख न भूख न रोग ब्यापै। चरण कमल लिवलाइए, तह जन्म न मरण आवन जाना। निचल सरणी पाइए, प्रेम बिछोह न मोह ब्यापै। नानक हर एक त्याइए, दृष्ट धार मन बेदिया प्यारे। रतड़े सहज सुभाई, सेज सुहावी संग मिल प्रीतम। आनंद मंगल गुण गाए, सखी सहेली राम रंग राती। मन तन इच्छ पुजाए, नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया। कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवां, घर चौथा

दुख सुख करत जन्म फुनमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बहा फकर सतगुर निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन धन अर्पो सब अपना, कवन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयु प्रभ मांगन, तुम पेखत शोभा मेरे आंगन रहाओ। अनिक जुगत कर बहुत विचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहु नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवां। मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मह आपे, हर जप रसना दुख न व्यापे रहाओ। तिखा भूख बहुत तपत व्यापिया, शीतल भए हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृपताना हर गुण गाया, देहु भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवां, गुर पूरा वड़ पा।

मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर मह आया। रहाउ भगत वच्छल पै काटन हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतत पावन प्रभ बिरद वेद लिखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पिखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायन। बिलावल महला पंजवां, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे। पूज महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे। रहाओ एक बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपहु कछु न होवत पाही, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निदान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिखिया फल चाखिया। भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूढ़े। तब तन बिन सजाए बेहाल। रहाओ मन तन मन तने अपना कर थापिया, करन हार एक निमख न जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंत पपाई। नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई, सुख सहज

रहाओ। सगल सरंजाम करे प्रभ आपे, भय मनोरथ सो प्रभ जापे। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बिदाता। साध संग नानक रंग माणिया, घर आया पूरै गुरयाणिया। बिलावल महला पंजवां। सर्ब निदान पूरन गुरदेव रहाओ, हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खुआर साखत नर थीवे, राम नाम हुआ रखवारा। चख मारो साखत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे। मृतक फा

मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारिया बिलावल महला पंजवा, जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत काटे सो काल। रहाओ साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जमजाल। आपे सतगुर आप प्रतपाल, आपे सतगुर आपे प्रतपाल। नानक जाचे सादरवाल, बिलावल महला पंजवा। मन मह सिंचहु हर हर नाम, अन दिन कीर्त

पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया। रहा राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माहे त्याई। नानक गुरपूरे सरनाई, जिने अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा, सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार। रहाओ जो जो निंद करे।

महला पंजवा। ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग, पार ब्रह्म तू बक्सिया संतन रस भोग रहाओ।

ते बोल करा गौं जो प्रभ जियो दयाल होए कौ भगती लागौ लपट रहो मन बासना गुर मिल एह त्यागौ रहाओ।

प्रै निमक सुहागौ पंच संग गुर ते छुट्टे दोख अर रागौ हृदय प्रगास प्रगट भया निसबासुर जागौ शरण सुहागन आया जिस मस्तक भागौ कहु नानक तिन पाया तन मन शीत लागौ बिलावल महला पंजवा लाल रंग

प्रभ पाया सुखदाइया, मिलिया सुख पाहे, सहज समाना पीतरे, छोड़िया नह जाय रहाओ, जरा मरा नह व्यापई, फिर दुख न पाया, पी अमृत आघानिया, गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया, हर नाम अमूला, कीमत कही न जाइए, क्या कहे मुख बोला, सफल दर्श तेरे।

तुम बख्शनहारी रहाओ, हम अवगुण करह असंख नीत। तुम निर्गुण दाता रे, दासी संगत प्रभु त्याग। ए कर्म हमारे तुम देवो सब किछ दया तार, हम अकृत कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों, नह चित खसमारे। तुझते बाहर किछ नहीं भाव काटन हारे। कहो नानक शरण दयाल गुर, लेहो मुगद उदारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिय। प्रभ अपना त्याई, जित सेवै सुख होए कना। मन सोई गाइय, कहिए काए प्यारे तुझ बिना। तुम दयाल स्वामी सब

गयो त्रिण मेरद किता श्रम करते दम आड़ कौ ते गनीत नीता कवन वडाई कह सकौ।

अहंग बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध। अहंग बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध। लपट कपट ग्रह विद्या मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में।

रूप धूप सुगंधता कापर पुगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद। फिरत फिरत मानुख भया खिन भंगन देहाद ए अवसर ते चुकिया बहजोन प्रमाद।

चित, निश्चल आसन मिटी चिंत, नाही डोलेत भरम भुलावा मिट गया। प्रभ पेखत नेत गुण गभीर गुण नायका, गुण

छड़ाई मोहिते इतनी दृढ़तारी सगल रेन एहो मन भया बिनसी अपतारी निंद चिंद पर दुखना एखिन मह जारी दया मया अर निकट पे नाही दूरारी तन मन शीतल भये अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी बिलावल महला पंजवा पहल करूं तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना भेट देओ गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलहो दयाल निसबासुर मन अनद होत चितवत कृपाल रहाओ जगत उदारन साध प्रभु तिन लागहु पाल मोको दीजै दान प्रभु संतन पगराल उक्त सियानप कछ नहीं नाही कछ काल भ्रम पै राखू मोहते काटो जमजाल बिनो

संत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया भये भ्रम भसना नाम निदान नानक सुखी पेख साध दर्शना बिलावल महला पंजवां।

भाग माया धारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाउ संतन का दाना रूखा सो सर्व निदान गृह साकत छत्ती प्रकार ते भिखु समान भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन न हुई साकत सिर पौ रेशमी पहरत पत खोई साकत

सब किछ तुम ही ते हुआ। आप बणत बनाई दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई। सब किछ तुम ही ते हुआ, आप बणत बनाई दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संग जी, आप जी वडभागी हो जो प्यार सहित निता प्रति गुरुदेव जी के पावन दरबार विच बैठ के, घरां विच बैठ के अमृत बाणी के श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी कृपा करन, हाजरियां दर ते प्रवान कर लैन। पढ़ी सुनी बाणी का भाव सतगुरु जी समूह परिवारां नूं जीवां नूं बख्शिश करके निहाल करन जी। अगाध बोध बाणी पढ़दिआं बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईआं हन, आप संगत कृपालू सतगुरु बख्शण योग ने, भुल्लां ना चितारनियां। प्यार सत फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अकाल पुरख ऐसा समुद्र है, सतगुरु दीन दयाल जिवें समुद्र विच रह के मछली अंत नहीं पा सकती, तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत ला। जह जह देखा तै तै तू है, तुझ ते निकसी फूट मारा। इवें ही उस निरंकार दा आकार है। सतगुरु सच्चे पातशाह कह रहे ने वो हरदम हर पल सानू जीवन वास्ते कुछ ना कुछ बख्शिश करता है। जिहड़े कहंदे ने ना भई रब किथे है, 20-25 सेकंड लई अपनी नोज नू घुट के फड़ लो, पता लग जाएगा श्वास देण वाला भी कोई है। वो साडे विच है, असी ओदे विच। उस तो बगैर कुछ है ही नहीं। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जे कोई बोलदा पिया है ना ओदे विच भी ओही बोलदा है। जे कोई देखदा पिया है ना ओदे विच भी ओही देखदा है। ओ गल वक्री है, किसी दी कमाई इड्डी महान हो जाए, जह जह देखा तै तै तू है। ते सतगुरु कह रहे ने फिर वो जिहड़ी अवस्था है, वो जिहड़ी स्टेज है, जा पदवी कह लो जा कमाई कह लो, किसे विरले दी बनती है। सतगुरु कह रहे ने ओदे गुणा दी कोई गिनती नहीं, जिदे जिवें साडे अवगुणा दी कोई गिनती नहीं, पर ओदे गुण गायन करन नाल अवगुणा दा भी नाश हो जांदा है, मिट जांदे ने। सच्चे पातशाह तेरे तो बगैर कुछ भी नहीं, तेरे तो बगैर कोई भी नहीं। असी शरीर का ही मान करी जाते हैं, शरीर नू बॉडी नू अज तक किसी ने नहीं रखिया। ओदी अंश ओदी बख्शिश हुई, आत्मा ओदा हिस्सा कह लीए, वो कूच कर जाए ते सब कुछ मिट्टी बन जाता है। महाराज कह रहे ने मेरे साहिबा तेरे चोज बिना, ये सब तेरी लीला है, पर इनू समझदा कोई कोई है नहीं। ते बंदा कुछ होर समझण वास्ते आया सी, पर समझे कुछ होर जाता।

पावन जुरी बच्चे दोने बच्चे सुभाईमान सतगुरु जी हजूरी विच सच चुके हैं जी। सो परिवार हुक्म होया सी कि जातू मेरे वल है ता क्या मां शंदा तू सब किस मैं सौंपया जा तेरा बंदा